0: और थानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाने के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा इस सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 केनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसलिए तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन एंड टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है स्वीट्स ते स्नैक्स दी बड़ी कलेक्शन भी है जो की तुहानु जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 केनेडी रोड साउथ Brampton. ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलते ने फ्रेश वेजिटेबल्स स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानु लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वरगा याद रखो 100 केनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry 2023@gmail.com ते

0: कंपनी को जिसका नाम है ओएलसीसी कंपनी, उससे बोले भाई तू इंडिया से लेके अटलांटिक तक जितने जाल मच्छी के बड़े होते वो दाल तू ढूंढ, कोई तिनका कोई कीला कोई स्क्रू ड्राइवर कुछ तो उसपे कोई कोई कोई कोई ऐसा सब अटैच कोई फटा चटा कुछ तो लाके दे दे।
1: कुछ नहीं
0: कहा जी, मैं पूरा समंदर तलाश करा जी, कुछ नहीं मिला। जरा सोचिए कहाँ गया होगा वो प्लेन कभी।
1: चलो ठीक है सर,
0: तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, आपको पता भी नहीं है, कभी कभी जिन्नात भी उठा के ले जाते, पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ ले गए, उनकी दुनिया अलग है, वहाँ हम जा ही नहीं सकते कभी भी क्योंकि हमारा एड्रेस ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल योर ऑनर।
2: हाँ जी बेटे, सत श्रीकाल
1: जी, सत श्रीकाल।
2: मेरे साथ 1990 की गल है जी, है ना
1: जी, और जरा मलेशिया ने रल मिलदा प्लेन वाली गल जड़ी
2: जो ना ये कंप्यूटर कहते सारा कुछ खत्म हो जाना।
1: बड़ी सोचने वाली गल है कि अज कल आदमी दे कोले मैनुअल ओदे कोले की एसेट्स हैगी है, बैंक दे विच की पिया की नहीं पिया, मैनुअल कुछ भी नहीं हैगा, सब कुछ ऑन एयर ही है, सब कुछ ऑनलाइन ही है, सब कुछ।
2: मैं ओही गल करती हां
1: जी,
2: हुण सब कुछ आपा जे कहिए ना, मेरे को इन्नी जायदाद है,
1: बिल्कुल
2: इन्ना पैसा, कुछ भी नहीं।
1: मैं तो ओही कह रहा जे बाई चांस कोई जिदा नेपाल दे विच फ्लड आया, एदा दा कुछ टेक्नोलॉजी दे विच इस तरह दा कोई डिजास्टर आ गया ना कोई इस तरह दा, ते मेरा ख्याल है कि किसे दे कोल कुछ बचना ही नहीं होगा। बिल्कुल
2: नहीं, साडे कोल हुण देखो जे मैं कहां मैं लखां वाली मालिक नहीं,
1: क्योंकि नेपाल वाले तो चलो उन्होंने जिंदगी खत्म हो गई, उस तो बाद इथे की होएगा कि ज्योंदे जी आदमी मरणगे ज्योंदे जी।
2: हां जी, फिर देखो पिक्चर आप करवांदे सीगे अग्गे नेगेटिव रखदे सी उन्हां दी,
1: हां
2: ते हुण अपने कोल जिहड़ियां कंप्यूटर विच मैं बेटे नूं कहिंदा ना व्हाट्सएप कंप्यूटर च जिहड़ियां तुसीं पिक्चर हैगीआं तुहाडे फोनां च है, क्यों मैं किसे नूं किवें दिखा सकदी हां तुहाडे कोल।
1: बिलकुल, किड्डे प्यार दे नाल फ्रेम कर करके फोटोआं रखणियां जी, अपने वड्डियां दीआं बुजुर्गां दीआं शेल्फा दे उपर सजा सजा के रखनिया, ते हुण मतलब देखो जमाना किधर नूं तुरिया जांदा हो
2: रिहा। फिर तेरे नेगेटिव तो आप दोबारा पिक्चरां करवा,
1: दोबारा करवा ली दी असीं डेवलप
2: दे, हुण मेरे कोल भी कोई 500 नेगेटिव होना है ना, ते मैं बनवा तो सकदी हां, पर हुण जदों बच्चे कहिंदे साडे कोल तुहानूं फोनां च हैगा सारा कुछ जरूरी है ना, ओह प्यार थोड़ा रह गया फिर।
1: असी छोटे छोटे जो हुंदे सी जी, जो कॉलेज पढ़दे हुंदे सी ना, ते फोटो एक बारी खिचवा लेनी, ते उस तो बाद नेगेटिव रखना, जो कि फिर लोड पैनी उन्हें फिर डिवेलप करके कापियां कढ़वा लेनी है उदी।
2: हां जी, फिर देखो कोई गिन जोड़ घटाओ करना, कोई हथ लिखता बच्चियां नूं, कोई पेंसिल पेन नहीं करना, तो फिर लिखाई किधर गई, गुरु अंगद देव जी दी पंजाबी लिखी सब कुछ,
1: बच्चियां दी मेमोरी बच्चियां दी की हुण तां साडी भी मेमोरी खा गया जी, बिल्कुल एक जमाना सी सानू दसवीं तो लैके सारे रोल नंबर याद, अपनी गड्डियां केड़ियां केड़ियां उहनां दे नंबर याद, हुण कख भी नहीं याद रहिंदा, जदों वेखना मोबाइल खोलो ते लब्बो ओहदे विच
2: अपना फोन नंबर ही नहीं
1: दस सकते। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही।
2: बच्चे कित्थों लिखाई कित्थों करनगे, जिहड़ा पट्टियां ते लिखदे सी कापियां ते लिखदे
1: सी, हुण
2: तां उहनां नूं ऊड़ा भी नहीं लिखणा आउणा।
1: चुगली करदे जी, फिर रिकॉर्डिंगां करी जांदे, गल्लां बातां करी जांदे, नाल रिकॉर्डिंग कर करके उहनूं मिसयूज करदे अग्गे जा के, इह बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी दा एक बहुत डिवाइस जिहड़ी साडे कोल है इस वेले मोबाइल जिस दा नाम है, इहदे देखो इहदे च कोई शक नहीं कि फायदे बहुत है, जेकर तां तुसीं फायदे इहदे गिन लग पोगे तां तुहानूं इह लगूगा कि इहदे फायदे जिन्ने हैगे उस तों वध किसी दे फायदे है ही नहीं, पर इहदे च वी कोई शक नहीं कि तस्वीर दे दो पासे हुंदे हमेशा, जदों तुसीं इस दा नैगेटिव आस्पैक्ट देख लोगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਪਲੇਬਾਜੀ, ਧੋਖੇ, ਫਰੇਬ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 647-367-5353 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, 100 ਕੈਂਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰਮਟਨ 905-230-4800 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ

0: वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है।
1: ओए ट्रक काला लिया जदों देखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
2: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
0: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
1: इत्थे टी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
2: कॉल करो जे एन गैरी नूं
1: 905-459-5533
2: 905-459-5533 ते
1: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
3: Thank you, Thai, Satnam, Tatapure, Nepo, Neve, Atal, Mure, Duni, Sempen, Duprasad, Jap, Asas, Purasas, Hebises, Nandit, Hose, Bises, Bole, Sone, Hal, Sasiakal।
4: मैं कह जी काफी टाइम तो आपा कर दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कर वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा।
5: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कर दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के दिन देने।
6: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल।
5: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-9

कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।

0: के मदर इन लॉ जो है ना उस उनको माँ जी को जरूर अपने दामाद से कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस तरह घर में लाइक मेरी मेरी मदर इन लॉ लाइक मे बी अब मुझे उनको फोर्स करना पड़ता है कि हमारे घर शी डोंट शी नेवर कम्स. तो वो अभी तो जो पहले भाई साहब बैठे थे उनकी बात बहुत अच्छी थी कि वो कम्युनिकेशन सब में बहुत इम्पोर्टेंट है. तो माय वाइफ शी इज अ हार्ट पेशेंट, तो इस वजह से उन्होंने ना मुझे बताया कि यार वो मैं चाबी दे रही हूँ माँ जी को, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं भी काम पर होता हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है और ऑल दैट. सो पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कल्चर, फॉर इन एवरी कल्चर. सो पेरेंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हाँ ये भी बात ठीक है कि इस जगह पर हो जहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन इतनी नहीं होती, एजुकेशन मतलब के पेरेंटिंग इतनी नहीं होती, वहां पर ये मसले आ जाते हैं जहाँ पर वो जब हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि कहीं से कुछ कुछ से कुछ हुआ हुआ है. लाइक यू नो देयर आर मोर डिफिकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं जिंदगी में. और क्योंकि प्राइवेसी भी तो होती है, जैसे मैं घर पर आया हूँ आई वांट टू जस्ट चिल एंड वो मेरी मदर इन लॉ के सामने मैं शायद शॉर्ट में नहीं फिर सकता
1: जी जी.
0: मैं शायद शर्टलेस नहीं फिर सकता. सो
1: ठीक है चलो आपको लगता है कि अगर वो बात कम्युनिकेट की जाए तो फिर कोई इशू नहीं है.
0: आई थिंक सो देयर शुड नॉट बी एनी इशू. पर मदर इन लॉ को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. अगर उसको चाबी मिली है शी शुड अप्रोच अपने दामाद को या
1: जी.
0: बहुत इम्पोर्टेंट रोल है.
1: ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर कॉल. सुजोक होमियो क्लिनिक तो परमिंदर जी. परमिंदर जी वेलकम.
2: Very good morning, Navi, and warm hello to you and all our listeners.
1: So, बहुत सारे लोग मैं कहना कि किसी नशे नाल भी वध एडिक्शन हुई हुई है लोगों को शुगर दी. सो पहली गल तो आप शुगर क्यों इन्नी क्रेव करते हैं तो इन्हू किवें ट्रीट किया जाए क्योंकि वेट लॉस दे विच बड़े चैलेंजेस आते हैं शुगर नू लैके.
2: बिल्कुल नवे. सो यस एज यू हैव मेंशन के शायद मेरा ख्याल है कि ध्यान भी साडा उदों ही जांदा है जदों असीं कोई वेट लॉस प्रोग्राम या फिर ओवरवेट हो जांदे आ और असीं इस नूं कटाउण दी कोशिश करदे आ तां सब तों वड्डा चैलेंज है, सब तों वड्डा हर्डल साडे अगे चीनी आंदा. मरीज़ कहंदा है इवन इन माई ऑफिस व्हेन आई सिट विद पेशेंट्स एंड दे हैव चैलेंज इन वेट मैनेजमेंट तां उन्हां दा सारा तों पहला ही हुंदा खंड चढ़नी पेगी, चाह च भी नहीं पा सकती, गुड़ पा सकती हाँ, थोड़ी जी ब्राउन शुगर पा सकती हाँ, होर कुछ नहीं तो मैं स्वीटनर पा सकती हाँ. यूमीन वो कहेंगे रोटी फूड दे विच जो चेंजेस कहोगे असीं कर लेंगे पर शुगर पता नहीं क्यों नहीं छड़ सकते. यस एज यू हैव मेंशन नवि इट इज द बिगेस्ट एडिक्टिव थिंग ऑन द प्लैनेट. ज्यादा पापुलेशन अडिक्टिव शुगर तो ही है. हुण इहदे पिछे बहुत सारे कारण ने. एक तो साडे जिहड़े फूड्स ने जिहड़े प्रोसैस फूड्स ने उहनां दे अंदर शुगर बहुत ज्यादा ऐड कर दित्ती गई है एंड दैट इज वाई असी ज़ॉम्बीज वांगू उहनां चीज़ां नूं बार बार खरीद के खांदे हां. दूसरा जिहड़ी अपनी खुराक है उहदे अंदर भी शुगर बहुत ज्यादा असी कंज्यूम करदे आ, नॉट इन फॉर्म ऑफ शुगर बट यस एज ऑल्टरनेटिव्स. या फिर ओ फूड्स बहुत ज्यादा ने जिन्हां दे अंदर शुगर ज्यादा है. पेशेंट्स जिहड़े कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खांदे ने, जिवें कि अपनी प्राइमरी खुराक दे अंदर भी कार्ब्स बहुत ज्यादा ने, आटा बहुत ज्यादा है, ते जदों ही उहनां दा चैलेंज हुंदा जदों उन्होंने वो चीज छड्डनी हुंदी है ते कार्ब्स जिहड़े ने दे कम इन द वे बिकॉज हर वेले दी रोटी जिवें ब्रैकफास्ट लंच डिनर दे अंदर चाहे असीं सवेरे टोस्ट लिया ते फिर रोटी लई है फिर रोटी लई है तां ओह कार्बोहाइड्रेट जिहड़ी बॉडी कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट हैगी है उहदे अंदर शुगर बहुत तेजी नाल स्पाइक करदी है क्योंकि जो ही कार्ब्स अंदर जाते हैं छेती प्रोसैस होंगे शुगर स्पाइक करती है तो उन्नी ही तेजी ना फॉल करती है. तो जो फॉल करती है साड़ी बॉडी क्रैश होंगी है, टायर्ड फील करती है, थकावट फील करती है. रोटी खाने तो बाद बहुत सारे लोग कहेंगे मैं नींद आती है, कुकी चढ़ती है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग एंड फिर असं फिर भजते हैं कुछ एनर्जी बूस्टर लैन तो अं कहने क्विक असी चाहे चाह ची खंड पा के पी लिए और समथिंग जिदे मेरी एनर्जी

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कांटेक्ट करो। थोड़े कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कांटेक्ट लई नंबर है 6472952557 6472952557।
3: रात हमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
4: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
3: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया GTA दे विच 4 लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
4: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: जेकर तुसी अपने ट्रकां दा ऑयल चेंज कराना चाहुंदे हो, जां कोई लीकेज डैमेज ठीक करानी है, ते ट्रकां नू वॉश भी कराना चाहुंदे हो, तां ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 24/7 सर्विस प्रोवाइड करदे हन। इत्थे कैमरे लगे हुए हन जिस करके ट्रकां दे चोरी होण दा कोई खतरा नहीं है। साल दे 365 दिन तुहाडी सेवा विच हाजर ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश 905-452-9955 9054599955।

0: यार इना इंश्योरेंसा ने ते धुआं कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल लिंक तो जो अपनियां बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज आरईएसपी आरआरएसपी विजिटर इंश्योरेंस सुपर वीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन

0: जे तुसी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਬੰਸਰਾਜ ਹੰਸ
0: ਟੋਰਾਂਟੋ।
2: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704।
3: हासिल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर।
4: गुरबानी रेडियो भी है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए?
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: पर टिलो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com।

0: And now at the time of closing, in 3 years, appraisal is there's a shortage of approximately 200 to 300 grand. अब कंसर्न ये है कि इसको किस तरह से कॉप करें, होम ऑनर के पास इतने बड़े पैसे कहाँ से लेके आएंगे, राइट? तो इसके दो तीन ऑप्शन है. आई वांट टू डिस्कस माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस. सो नंबर वन, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर के ब्लैंकेट मॉर्गेज करें हम, है ना. ब्लैंकेट का मतलब होता है कि जो परचेज पे आपने बाय किया है, एग्जाम्पल है कॉन्डो 7 लाख का बाय किया है या घर बाय किया है 8 लाख का, तो उसी प्राइस पे आपको फाइनेंसिंग हो जाए. दैट्स कॉल्ड ब्लैंकेट. इरिस्पेक्टिव अगर अप्रेजल कम भी आया तो प्रॉब्लम नहीं है जी. जिन्ने दी भी वैल्यू तुम बाय किया सी ना प्रॉपर्टी, उन्नी वैल्यू दे 80% 90 85 90% तुहानू मॉर्गेज मिल जानी है जी. अभी सिचुएशन जो है, अब क्या है कि हर कोई ब्लैंकेट से क्वालिफाई नहीं होता होता है जी. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रीफाइनेंस, आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग घर है या तो उसे आप सेकंड फाइनेंसिंग ले लो शॉर्टफॉल के लिए या रीफाइनेंसिंग कर लो. बट तीसरा ऑप्शन एक और भी है कि विदाउट रीफाइनेंसिंग किए हुए, विदाउट टेकिंग अ सेकंड मॉर्गेज, यू कैन स्टिल गेट अ 80% फाइनेंसिंग ऑन द परचेज प्राइस. सो माई मैसेज टू ऑल द पीपल, ऑल हु आर लिसनिंग, कि जिन्होंने भी जी है गोंडो क्लोजिंग की है, जिन्हें तो अप्रेजल जो है कम आ रही है सी 2 लाख 3 लाख डॉलर, उन्होंने चिंता नहीं करनी है जी. मेरे पास सोल्यूशन है जी, तुम कॉल करो. यू नो नीड टू टेक अ सेकंड मॉर्गेज, नो नीड टू टेक अ थर्ड मॉर्गेज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी हैविंग अ हाउस, एग्जिस्टिंग घर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा. अगर कोई भी घर है तो उससे एक्विटी होनी चाहिए जी. तो मैं आई विल बी एबल टू हेल्प यू फॉर योर क्लोजिंग. आई एम हियर इन मिसिसागा और डेरी थे. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल मी 647-512-7000, 647-512-7000.
1: बिल्कुल जी, तुसी मुकेश जी दे नाल जिहड़ी जी गलबात कर सकदे हैं 647-512-7000 ते. और मुकेश जी, मेरा एक होर सवाल तुहाडे ताईं इह हैगा कि अगर कोई जिहड़ा है जी प्राइवेट फाइनेंसिंग दे विच स्टक है और उन्हां दी इनकम भी लो आ, लो क्रेडिट आ, ते उन्हां लई तुहाडे कोल की सोल्यूशन हैगा कि साडे ओह भैण भरा दी तुसी किद्दां मदद जिहड़ी जी कर सकते हैं?
0: देखो चिंता ये जी किरण जी, जब थोड़ा स्कोर जो है लो है तो सी जाते हो बैंक नाल, राइट? बैंक नाल मॉर्गेज नाल, तो बैंक तो सी मॉर्गेज जो है नहीं कर दी है, डिक्लाइन कर देती है, राइट? तेनू मॉर्गेज नहीं मिलती है, आपको फिर शॉप अराउंड करना पड़ता है. स्पेशली अगर आपका 600 से क्रेडिट स्कोर कम है तो आपके मॉर्गेज मिलना आप तोड़ने लिए बड़ा चैलेंजिंग है. बट वॉट देर आर टू ऑप्शन, इधर इफ यू आर पेइंग अ वेरी हाई इंटरेस्ट ऑन योर सेकेंड मॉर्गेज राइट नाउ, example you paying 12-13%, I can replace with 6.99% with no lawyer fee, no appraisal. All right, interesting hai na. To 6.99 se aap convert kar sakte ho agar aap 12-14% de rahe ho. But if you, my suggestion to you, if you are self employed ya kisi bhi business ke andar ho jahan aap income declare kam karte ho, I have a solution to do your refinancing. Aapki mortgage puri first aur second dono ko mila ke, फर्स्ट मॉर्गेज नु भी सेकंड मॉर्गेज नु भी दोनों नु कंबाइन करके तो थोड़ी एक को मॉर्गेज हो सकती है जी. तो अनु 2 से 3 हजार डॉलर का सेविंग होगी जी मंथ ऑन मंथ, राइट? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर मेकिंग, यू आर नॉट डिक्लेयरिंग मच इनकम, यू आर मेकिंग अ इनकम बट यू आर नॉट डिक्लेयरिंग इट, राइट? In the same time, the bank is also declining because of low credit, bad credit. I have a solution. No need to worry. So once again, agar renewal bahut aage hai thoda, agar 2028-30 hai aur thodi penalty jo bahut zyada hai, to tusi jo hai apni second mortgage replace kar sakte ho 6.99. But if your mortgage up for renewal in 3 months, 6 months or within a year, your penalty is very small. Then I can suggest you कि आप refinancing करो और थोड़ी तुसी bank नाल close to the bank mortgage का rate तो मिल जाएगा जी. और सबसे important बात है थोड़ी saving शुरू हो जाएगी. तो मैं ये मिसेसागर ते हूँ, मिसेसागर डेरी ते हूँ. सैटरडे नो स्पेशल टाइम है जी, मॉर्निंग 12 to 4 PM. इफ यू वॉन्ट टू मीट मी इन पर्सन, अगर कॉल करनी है, टेक्स्ट करनी, आई एम हियर टू हेल्प यू. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल मी 647-512-7000, 647-512-7000. और इसके अलावा किरण जी, स्पेशली ट्रक ड्राइवर हो गए जिनकी अभी इनकम तक काफी इशू चल रहे हैं, और इमिग्रेशन बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट वाले में बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको कोई इमरजेंसी फंड चाहिए, आपको इमीडिएट फंड चाहिए बिजनेस के ऊपर, घर के ऊपर, आई कैन हेल्प यू. ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

0: AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: मिठी बोली वर्गा ते सौ रंगां दी होली वर्गा न्यूज

0: आप चाहे रिटायर्ड है, हाउस वाइफ है, अगर फैमिली ऑफ फाइव है तो 1.5 लाख से ज्यादा भी, मतलब 1,70,000 आता है, $170,000 0% पे बिना गारंटी के 2.5 साल बाद पहली किस्त स्टार्ट है। हमारी फीस कितनी है? सिर्फ 199। काम होने के बाद क्यों हमें पता आपका काम हो जाएगा? असली हम आपका सर लाइक आपके साथ है, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, कोई कैडेट चेक नहीं होता इसके अंदर। आसान से ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगाएं, 50,000 से 1,70,000 हासिल करें, प्रॉपर ऑफिस, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, कोई भी चलाकी नहीं है, नहीं है, नहीं है। 400
1: दस दिए कि यह सिर्फ भाई ओंटारियो की गल है, यह ओंटारियो वाले लिए है। जे तुसीं कहो कि साडे चाचे दा मुंडा कैलगरी रहिंदा, उहदा भी अपलाई कर दो, नहीं होना उहदा अपलाई, उहनां नूं उत्थे देखना पैणा कि उहनां दे सिस्टम दे विच उहनां दे रूल रेगुलेशन की कहिंदे आ, उहनां दी सरकार उथों दी प्रोविंशियल की कहिंदी है। यह सिर्फ ओंटारियो दे विच जिहड़े तुसीं रह रहे हो, जिथे तुसीं सुन रहे हो, तुहाडे रिश्तेदार कितें रह रहे हैं, उहनां लई तुसीं कह सकदे हो, पर जे आउट ऑफ ओंटारियो कोई रह रहा वा उहनां लई नहीं। नागपाल साहब मैनूं दस्सदे जी, बहुत सारे कहिंदे फैमिली दे कई बार फोन आउंदे आ जी, असीं तां करा लिया, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ?
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਾ ਆਪਣੇ। ਅਭੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਥੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਬੈਂਕ ਮੇ, 10,000 के लोन के लिए उन्होंने 100 कागज मांग लिए, फिर कहते फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। भाई साहब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तभी तो पैसे मांगने आए हैं, फिर उन्होंने हमारा सुना शो था करके आए, रिटेन हुए पैसे उनके खाते में कितने वाले आने वाले 1.5 महीने में। तो कोई भी चलाकी नहीं है, कोई कागज नहीं लगते, नकली कागज तो लगते ही नहीं। आपका NOA, आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं लगता। 50,000 से 1,70,000 हासिल करें, इससे बढ़िया लोन धरती पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, गारंटी दे रहा हूं। हजारों को असिस्ट कर चुके हैं, चलाकी नहीं है। 437-234-3175 437-234-3175 कॉल करो ऑफिस आओ, 437-234-3175 437-234-3175
1: 437-234-3175 से तुसी कॉल कर लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। जुड़े हुए रेडियो प्रोग्राम सारंग दे नाल। मान साहब
2: जी, सर
1: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਲੋਨ ਜਰਾ।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नु मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7.